0: और आइए आप सुने लता मंगेशकर की आवाज में तुलसीदास की पारंपरिक भक्ति रचना।
1: ज्ञान के बिना कर्म क्लेशमय हो जाता है और कर्म के बिना ज्ञान बांझ रह जाता है। भक्ति का उदय होते ही ज्ञान और कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, पर इस भक्ति का उदय हो कैसे? भजमन श्री रामचंद्र।

0: अब हम आपको सुनवाते हैं गोपाल शर्मा और सुखदेव कुमार की आवाज में तुलसीदास की रचना मेरो भलो कियो राम।
1: ज्ञान, कर्म और भक्ति, जब इन तीनों का संगम होता है तब जीव का ब्रह्म राम से मिलन होता है, उसमें वो एकाकार हो जाता है।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं अनिल चट्टोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमोय मित्रा. तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव में ख्याल गायन, कलाकार अनिल चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू ख्याल इन राग नट भैरव. आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग अनिल चटर्जी, एकम्पनिंग ऑन द तबला तरुण रॉय एंड ऑन द हारमोनियम हिरणमोय मित्रा.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रागनट भैरव में ख्याल सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अनल चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे हिरन मोय मित्रा। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बैरागी में ख्याल गायन। आज के कलाकार हैं रजा अली खां। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पलाश सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं अमिताव भट्टाचार्य। तो आइए सुनते हैं राग बैरागी में ख्याल, कलाकार रजा अली खान।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन रागनाथ भैरव बाय आवर आर्टिस्ट अनिल चैटर्जी, एकम्पैनिंग ऑन द तबला तरुण रॉय एंड ऑन द हारमोनियम हिरणमय मित्र। दिस इज रागम 24/7 ऑन डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट नाउ लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग बैरागी बाय आवर नेक्स्ट आर्टिस्ट रजा अली खान, एकम्पैनिंग ऑन तबला पलाश सरकार एंड ऑन द हारमोनियम अमिताभ भट्टाचार्य। नाउ लिसन टू अ ख्याल इन राग बैरागी बाय आवर आर्टिस्ट रजा अली खान।

0: राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे रजा अली खां। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पलाश सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग बैरागी बाय आवर आर्टिस्ट रजा अली खान, एकम्पानिंग ऑन तबला पलाश सरकार एंड ऑन द हारमोनियम अमिताभ भट्टाचार्य। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित सुखदेव चतुर्वेदी से ध्रुपद धमार गायन. प्रस्तुत है राग नट भैरव. इसमें आलाप तथा चौताल में निबद्ध ध्रुपद प्रस्तुत है. बोल शंकर हर महादेव. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय पंडित सुखदेव चतुर्वेदी. ही प्रेजेंट्स राग नट भैरव इन विच आलाप एंड ध्रुपद सेट टू चौताल. बोल शंकर हर महादेव.

ये था राग नट भैरव। आप सुन रहे हैं पंडित सुखदेव चतुर्वेदी का ध्रुपद धमार गायन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे हैं प्रकाश शेजवल। अपना गायन जारी रखते हुए पंडित सुखदेव चतुर्वेदी अब प्रस्तुत करते हैं राग बिहाग। इसमें आलाप और धमार प्रस्तुत है। बोल नवेली मधमाती चली आई। दैट वॉज राग नट भैरव। You are listening to Dhrupad Dhamar recital by Pandit Sukhdev Chaturvedi. He is accompanied on Pakhwaj by Prakash Shezwal. Continuing his vocal recital, Pandit Sukhdev Chaturvedi now present Raag Bihag, in which he presents Aalap and Dhamar. Bol Naveli Madhamati Chali Aayi.

ये था राग बिहाग। आप सुन रहे थे पंडित सुखदेव चतुर्वेदी का ध्रुपद धमार गायन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे प्रकाश शेजवल। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग बिहाग। यू वर लिसनिंग टू ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय पंडित

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग बागेश्री में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित रचना रूपक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital by Amitabh Chatterjee. He is accompanied by Vinod Pathak on tabla. First, listen to Alap, Jod and Jala in Rag Bageshri. The Vilambit Gat is set to Rupak Tal and Drut Gat is set to Teen Tal.

0: अभी आप अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग बागेश्री सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग मिश्र शिवरंजनी। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिसनिंग टू द सितार रिसाइटल बाय अमिताभ चटर्जी। नाउ लिसन टू राग मिश्र शिवरंजनी। ही इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं. प्रस्तुत है उपशास्त्रीय गायन. उपशास्त्रीय गायन के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कोयल दास गुप्ता का गायन. कोयल दास गुप्ता अपने गायन का आरंभ कर रही है काफी ठुमरी से. बोल है जब से श्याम सिधारे. आपके साथ तबले पर है उज्जवल भारती, हारमोनियम पर है रतन नट्टा और सारंगी पर है अबिद हुसैन. सुनते हैं कोयल दास गुप्ता की गायी हुई का

श्रोताओं, हम सुन रहे थे कोयल दास गुप्ता की गाई हुई काफी ठुमरी। आपके साथ तबले पर थे उज्जवल भारती, हारमोनियम पर थे रतन नट्टा और सारंगी पर थे अबिद हुसैन। आइए आप सुनते हैं कोयल दास गुप्ता की गाई हुई खमाश ठुमरी। आपके साथ तबले पर है उज्जवल भारती, हारमोनियम पर है रतन नट्टा और सारंगी पर है अबिद हुसैन। सुनते हैं खमाश ठुमरी अबना बजाओ शाम, कलाकार कोयल दास गुप्ता।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे कोयल दास गुप्ता की गाई हुई खमाज ठुमरी। आपके साथ तबले पर थे उज्जवल भारती, हारमोनियम पर थे रतन नट्टा और सारंगी पर थे अबिद हुसैन। आइए इसके बाद अब सुनते हैं कोयल दास गुप्ता का गाया हुआ मारू बिहाग दादरा, शाम तो है नजरिया लग जाएगी। आपके साथ तबले पर है उज्जवल भारती, हारमोनियम पर है रतन नट्टा और सारंगी पर है अबिद हुसैन। मारू बिहाग दादरा, कलाकार कोयल दास गुप्ता।

श्रोताओं हम सुन रहे थे कोयलदास गुप्ता का गाया हुआ मारू बिहाग दादरा। आइए इसके बाद कोयलदास गुप्ता प्रस्तुत कर रही है मिश्रा पीलो दादरा सावरिया प्यारा रे।

श्रोताओ, हम सुन रहे थे कोयल दास गुप्ता का गाया हुआ मिश्र पीलू दादरा। आपके साथ तबले पर थे उज्जवल भारती, हारमोनियम पर थे रतन नट्टा और सारंगी पर थे अबिद हुसैन। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन. कलाकार हैं सुनील चट्टोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनुरुद्ध मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चितरंजन दोलोई. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन. कलाकार हैं सुनील चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen first to a khayal in the rag Gorakh Kalyan. Our artist is Sunil Chattopadhyay. Accompanying him on the tabla is Aniruddha Mukhopadhyay and on the harmonium is Chittaranjan Doloi. Listen now to khayal in the rag Gorakh Kalyan. Our artist Sunil Chattopadhyay.

0: सुनील चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिरुद्ध मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चित्तरंजन दोलोई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग रागेश्री पर सितार वादन। कलाकार हैं शुभजीत मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर राय चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग रागेश्री पर सितार वादन। कलाकार हैं शुभजीत मजुमदार।
1: You were listening to a khayal in the rag Gorakh Kalyan. Our artist was Sunil Chattopadhyay. Accompanying him on the tabla was Aniruddha Mukhopadhyay and on the harmonium was Chittaranjan Dolui. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist is Shubhajit Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla is Timir Roy Chaudhuri. Listen now to the sitar in the rag Rageshri. Our artist Shubhajit Mojumdar.

0: अभी आप राग रागेश्री पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शुभजीत मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर राय चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist was Shubhajit Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla was Timir Roy Chaudhary. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाषा मिश्रा का वायलिन वादन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी. मध्य लय और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा.

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। विलंबित रचना तीन ताल और द्रुत रचना झप ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। सुभाषा मिश्रा अपने कार्यक्रम का समापन वायलिन पर बजाए राग मिश्र भैरवी से कर रही हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग मिश्र भैरवी, तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं रत्नाकर पई, राग है ललित. विलंबित ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल हैं घटन लाग रैन. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बंदिश के बोल हैं पीयू पीयू रटत पपीहरा. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी ख्याल रेसाइटल बाय रत्नाकर पाई. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग ललित. द कंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला.

अब आप सुनेंगे राग सारंग में मध्य लय ख्याल जो झपताल में निबद्ध है। बोल हैं ऊधो धन धन तुम बिहारी। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं या रब में रचो। संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल ददू खां और सारंगी पर समद खां। नाउ लिसन टू राग सारंग। द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द तबला बाय इस्माइल ददू खां and Samad Khan on the Sarangi.

अगली प्रस्तुति है राग काफी कान्हड़ा। इसमें आप सुनेंगे त्रिताल में निबद्ध विलंबित ख्याल, बोल हैं लागी रे मद पिया। नाउ लिसन टू राग काफी कान्हड़ा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है इरा मुखर्जी का गाया राग भैरव. झपताल में निबद्ध बद के बोल हैं गव आदि. पखावज पर आपकी संगति की है ऋषि शंकर उपाध्याय ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now bring you a vocal Dhrupad recital by Ira Mukherjee. She begins her recital with Rag Bhairav. The Dhrupad is set to Jhaptal and the words are Gav Adi. She is accompanied on the Pakhavaj by Rishi Shankar Upadhyay and on the Sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami.

0: और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग तोड़ी। पखावज पर आपकी संगति की है ऋषि शंकर अध्याय ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू जस्ट हर्ड इरा मुखर्जी परफॉर्मिंग राग भैरव। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द पखावज बाय ऋषि शंकर उपाध्याय एंड ऑन द सारंगी पंडित भारत भूषण गोस्वामी। इरा मुखर्जी कंटिन्यूज हर ध्रुपद रिसाइटल विद द प्रेजेंटेशन इन राग तोड़ी।

0: अभी आप इरा मुखर्जी का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी ऋषि शंकर उपाध्याय ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड अ वोकल ध्रुपद रिसाइटल बाय इरा मुखर्जी इन राग तोड़ी। शी वॉज अकंपनीड ऑन द पखावज बाय ऋषि शंकर उपाध्याय एंड ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति रचना वैभवी शेट्टी के स्वर में।

संत ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, स्वर था वैभवी शेटे का। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत कान्हो पत्रा की रचना पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में।

पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में आप सुन रहे थे संत कान्हो पत्रा की रचना। अब हम सुनाने जा रहे हैं संत तुलसीदास की रचना कुमुद कुलकर्णी के स्वर में।

कुमुद कुलकर्णी के स्वर में आप सुन रहे थे संत तुलसीदास की भक्ति रचना। आइए आप सुनते हैं संत सेना महाराज की भक्ति रचना समूह स्वर में। संगीत है बाल माटे का।

श्रोताओं, समूह स्वर में आप सुन रहे थे संत सेना महाराज की रचना, संगीत था बाल माटेगा। भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में आगे की भक्ति रचना है संत दुकाराम महाराज की। इस भक्ति रचना के लिए स्वर